0: श्री सत्यसाई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 10 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
1: भूमिका। भगवान बाबा अपने इस अत्यंत प्रभावपूर्ण प्रवचन में एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण अभयता की विस्तृत व्याख्या करते हुए हमारे जीवन में उसे अपनाए जाने की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। भक्ति योग में वर्णित 26 गुणों में यह अभयता बहुत प्रधान गुण है। कई लोग अभयता को निडरता के रूप में लेते हैं, परंतु भगवान बाबा उसे गलत धारणा सिद्ध करते हैं। स्वच्छता, धीरता, संयम, क्षमा, दया, अहिंसा जैसे अनेक गुणों का समन्वित स्वरूप ही अभयता है। अभयता से युक्त मानव जीवन की विशिष्टता को निरूपित करने के लिए स्वामी एक बहुत ही मनोरंजक प्रतीक जानवरों की चतुष्पाद महासभा के माध्यम से तथ्यों को हृदय की गहराइयों तक पहुंचाते हैं। स्वामी स्पष्ट करते हैं कि चार तत्वों में मानव और पशु समान हैं, परंतु माया को पराजित करने, आत्म तत्व से अवगत हो सकने और निर्वाण को प्राप्त कर सकने की योग्यता के कारण ही मानव महान होता है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी अभयता का उपदेश दिया। अंत में स्वामी का मधुर उपदेश यह है कि प्रत्येक मनुष्य को इस अभयता के महत्व से अवगत होते हुए उसे जीवन में अपनाने के प्रयत्न करने चाहिए।
2: రెండవ వస్తు ఉంది అన్నప్పుడే మానవుని యందు భయం ప్రవేశిస్తుంది. సర్వత్రా పంచభూతాని సత్యం అనగా సర్వత్రా పంచభూతాని, జగత్తంతా కూడాను పంచభూతములు తప్ప అన్య పదార్థము లేదనేటువంటి సత్యాన్ని విశ్వసించినప్పుడే భయం ప్రవేశించదు. షష్టం కించిన విద్యది, ఆరో పదార్థం జగత్తునందు లేనే లేదు అనేటువంటి యొక్క దృఢ విశ్వాసం ఉండినప్పుడే భయం ప్రవేశించదు.
1: ఈశ్వర్ కే అలావా కిసీ దూసరీ వస్తు కే హోనే కీ బాత్ కే కహనే పర్ హీ మానవ్ మే భయ కా ప్రవేశ్ హోతా హై. సర్వత్ర పంచభూతాని షష్టం, అర్థాత్ సర్వత్ర పంచభూతాని, సమస్త జగత్ మే पंचभूतों के अलावा अन्य पदार्थ के न होने के सत्य पर विश्वास करने पर ही भय प्रवेश नहीं करेगा। षष्टम किंचिन्न विद्यते, जगत में छठा पदार्थ है ही नहीं के दृढ़ विश्वास के होने पर भय प्रवेश नहीं करेगा।
2: इदि ओक बल्ल, इदि ओक कुर्ची, अदि ओक तलुपु, अदि ओक किटिकी, इदि ओक टूर्, ఈ ఐడెంటిటీని రూపనామములు వ్యత్యాసముగా ఉన్నవి కాని ఐదు కూడాను కాస్తవి, కర్రని, పర్వతములు శిలామయములు, వృక్షములు కాస్తమయం, భూమి మృణ్మయం, దేహము మాంసమయం, సముద్రము జలమయం, ఈ పంచభూతములు పరమాత్మ బిందువులే.
1: యహ్ ఏక్ మేజ్ హై, यह एक कुर्सी है, वह एक खिड़की है, वह एक दरवाजा है, यह एक स्टूल है। इन पांचों के रूप और नाम भिन्न भिन्न हैं, परंतु पांचों काष्ठ ही हैं, लकड़ी ही हैं। पर्वत शिलामय हैं, वृक्ष काष्ठमय हैं,

0: हर पल हर कदम पर डरते जा रहे हैं। परीक्षाओं के आने पर डर, एयरप्लेन के जरा सा हिलने डुलने से डर, रिक्शे में जाते समय सामने से किसी लॉरी के आने पर डर, सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक डर, सोने से पहले चोरों के आने और कुछ करने का डर, इस तरह हम डर में ही जीवन बिता रहे हैं।
1: मन अभयुं कावाली, अदे दैव विश्वासं पेंचुकोवाली, आ विश्वासं कोल्पोवटं चेतने मनकु भयं एर्पडुतुंदि। भयमुनकु मूल कारणं तन्नु तानु मर्चिनटुवंटि वाडिके भयं एर्पडुतुंदि। नेनेवरु अनेटुवंटि ओक सत्यानि तानु मर्चिपोतुन्नाडु। केवलं आयन अनुभवंतो कूडिनटुवंटि ओक अंगमुलतो कूडिनटुवंटि मानवुडि कातार विश्वसिस्तुन्नाडु।
0: हमें अभय होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाना चाहिए। इस आस्था के न होने के कारण ही हम भयभीत होते जा रहे हैं। भय का मूल कारण स्वयं को भुला देना ही है। मैं कौन हूं कि सत्य को वह भूलता जा रहा है। वह स्वयं को अनेक अंगों से युक्त 5 फीट का मानव समझ रहा है।
1: ఆత్మవిశ్వాసం కలిగినటువంటి వాడే దమడు, దమ
0: अंगों से जो युक्त है वह मानव नहीं है। स्वयं को आकार मात्र मानेगा तो वह नाम मात्र के लिए मानव होगा। अतः माया को दूर कर, आत्मा का दर्शन कर, निर्वाण में विलीन होने वाला ही मैन है। ऐसा न करने वाला NAM अर्थात नाम मात्र का मानव होगा। जिसमें आत्मविश्वास है वह दमी है, जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वह मद अर्थात अहंकारी है।
1: आत्मविश्वास लेने उन्नति वाड़े साक्षर महा నిగ్రహించినటువంటి మహాపురుషుడు, అట్టి నిగ్రహ శక్తి లేనటువంటి వాడు రాక్షసాలు. ఇప్పుడు నువ్వు తిప్పి చెందినప్పుడు దీనికి విరుద్ధంగా మనకు కనిపిస్తుండాలి, శాంతికి అశాంతి. కనుక ఎంఏఎం మ్యాన్ అనేటువంటి దానికి ఈ అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఈ అర్థాన్ని మనం తీసుకోకుండా పోతే ఎంఏఎం నామ మాత్రమైపోతుంది. అనగా మనం నామమాత్రము మనుషులమే కాని మనం నిజమైనటువంటి మనుషులము కాదు అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయం చేసుకోవాలి.
0: जिसमें आत्मविश्वास है वह साक्षरा है अर्थात इंद्रियों को वश में कर चुका महापुरुष है। ऐसे नियंत्रण से वंचित व्यक्ति राक्षस है। अतः हमें मैन के लिए यह अर्थ लेना चाहिए। यदि यह अर्थ नहीं लेते हैं तो वह NAM नाम मात्र हो जाता है। इसलिए हम नाम मात्र मानव ही हैं, यथार्थ में मानव नहीं है।
1: कुरुनंदना कृष्णुड़ अर्जुन कुरुनंदना दीन अर्थ तन कुरुनंदन कर्म आचरण आनंद अर्जुन मन को पनी उठने दिन मन चला बेजार पनी अर्जुन की आनंदम मन संडे वे चला आनंद पनी उ
0: श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए हे कुरुनंदन कहा। कुरुनंदन का अर्थ क्या है? कुरुनंदन कर्म का आचरण करने में आनंदित होने वाला वह अर्जुन ही हैं। जिस दिन हमें काम होता है उस दिन हम बहुत उद्विग्न रहते हैं। काम करने में ही अर्जुन आनंदित होते हैं और हमें संडे के आने पर आनंद होता है क्योंकि उस दिन कोई काम नहीं होता है।
1: पदमी रोज अर्जुन चला विचार

कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण